ना हरम में ना सुकून मिलता है बुतखाने में, चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में। आहा।

तो आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं

हम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम, हमने खाई है कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

पीसे पीसे करे लाला जावेगा नरक, थारे पीछे भूत सारे जावेंगे घटक। भूतने के तेरे जैसा कोई ना कमीना, भूतने के तेरे जैसा कोई ना कमीना, सारे बहुत

0: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी,
0: और थोड़े से भाई टूटे।

0: सारी।
1: छोड़ो मेरा हाथ।
0: मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी साड़ी, छोड़ो मेरी साड़ी।
1: पहले मेरा खत वापस करो।
0: क्यों?
1: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो?
0: शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो?